0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं

0: ग्रायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
0: जी हा, 3135525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: ख़ुशख़बरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वाला ना हो, पाकिस्तानी हो।
1: अच्छा, तो आप प्ले करोगे?
0: यस।
1: चल तो मुझे ये बताइए
0: चले, ठीक है। और मुझे बताएं किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट मेरे दोस्त है, उनको करना है। आपके सवाल मेरे साहब है और ख्याल साहब है और हमारे प्यारे दोस्त जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। लेकिन ये प्ले जरूर समझे ना, क्योंकि ये सूफी गाना है और अच्छा गाना है, तो मुझे ये पसंद है। क्योंकि इमाम गजाली अभी आज करीब आने वाला है, 20 तारीख को इमाम गजाली है,
0: ओके जी। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।

0: साथ साथ कॉमेंट्स को इंट्रीब्यूट करते हैं श्री और स्मार्ट किशोर ने कॉमेंट किया है, हाय हेलो कॉल करनी है आज, लग नहीं रही है, लगाए लगाए लगेगी और डेफिनेटली जरूर लगेगी। और इसके अलावा जी हाली सुल्तान ने हमें कमेंट किया है, स्वीट आरजे हारून का सॉन्ग हबीबी सॉन्ग अच्छा था, ओके स्वीट आरजे आई एम लिसनिंग योर शो फ्रॉम हैदराबाद। और इसके अलावा नाइस स्टार्ट शो स्वीट टू यू, अच्छा ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आज सुनिए आपने हाले सुल्तान। अच्छा कॉलर है लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो हेलो
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल।
1: आवाज आ रही है
0: जी? जी आवाज आ रही है आपको, आ रही है?
1: वापस नहीं आ रही ना।
0: वापस आ रही है?
1: नहीं वापस आज नहीं आ रही,
0: वापस आज नहीं आ रही। चलें फिर तो जबरदस्त, वेरी गुड। और मुझे ये बताइएगा स्मार्ट किशोर के कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
1: शुक्र है लगा, आज नंबर नहीं लग रहा था।
0: आज नंबर नहीं लग रहा था, फिर कैसे लग गया?
1: यही तो सोचने वाली बात।
0: चलें ठीक है जबरदस्त, कोई अच्छा सा गाना लेकर आए हैं?
1: नहीं आज मैं रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ जो आपके रूल के खिलाफ है।
0: ओहो ये मुश्किल में डाल देते हैं आप लोग मुझे।
1: सुनाना तो कोई बुरा नहीं है ना। अब मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा ये गलत है, मैं रूल के खिलाफ नहीं जाता। तो उन्होंने जो है ना मुझे मेरी माँ की कसम दे दी। मैं मजबूर हो गया।
0: अच्छा जी चलिए ठीक है, कोई कोई कंटेंट बॉलीवुड का है क्या?
1: हाँ राहत फतेह अली खान है मैम, कुछ अपना है कुछ पर...
0: ओके आप सुना सकते हैं लेकिन ये है कि मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी।
1: कोई इशू नहीं है, मैंने आपसे यही कहा ना सिर्फ मुझे सुनाना है।
0: ओके ओके सुना दें सुना दें।

0: प्रोग्राम वधायो न
1: प्रोग्राम वधायो कैसे कैसे
0: एक दो भी क्यों ना
1: एक दूसरा भी करो
0: प्रोग्राम
1: सुने तो एफएम वाले करवाएंगे तो करूंगी ना
0: एफएम वालों का मैं जाता में हूँ जब नंबर मिल गया ना तो मैं उनको कहूँगा वो जो यार जो सिद्रा है वो तीन प्रोग्राम करती है वो जो नाजपुर है वो उसको छोड़ दे नाजपुर भी और सिद्रा को भी आपको दो प्रोग्राम होने चाहिए
1: ओके ठीक हो गया भाई थैंक यू वेरी मच
0: भाई मौला कुछ गानो बुधरा जाए कसम भी
1: अच्छा, इस गाने का टाइटल क्या है वैसे
0: इसका टाइटल है ए मिठा सीने ला सोले दिल बेताबा
1: ए मिठा सीने ला ओके शमन का गाना है
0: जी जी शमन का है
1: चले जबरदस्त थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखे अल्लाह हाफिज गाना प्ले कर रहे हैं और ये रहा आपका गाना

अरे कॉल ड्रॉप हो गई, देखिए कितना अच्छा गाना चल रहा था. चलेंगे कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच सईद भाई, आपने गाना बनाया, गाना सुनाया और बहुत अच्छा गाना. और ये वाला तो मैं सर्च नहीं कर सकती अब आप कौन सा गाना कहने वाले थे. खैर कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है. हमारा सेगमेंट होने वाला है 12 बजे के बाद हरा भरा पाकिस्तान, और मैं प्ले कर रही हूँ आसिम अज़हर की आवाज़ को. इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हम सेगमेंट के साथ आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी अड्डन ते मिजाइल हमला उर्दन पारा पंज ईरानी मिजाइल नाकारा बणण जी दावा। अमेरिकी फौज पारा उर्दन में ईरानी हमलन जी तस्दीक। ईरानी पासदार इंकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डन ऐं सेनेट काम जे मर्कज खे बैलिस्टिक मिजाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारा फायर मिसाइल नाकारा बणाया विया आहिनि। अमेरिकी फौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तरफ़ां फायर कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि।

ऐं चाहे थो त सदाई जंग में फाथल रहां। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़ इंतिहाई सख़्त आहे। मुआदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमिल कयो वेंदो।

हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियाड़ी में मिलनि था। सिंधु में असांजो साहो आहे। सिंधु दरिया हज़ारनि सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटा में हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़ कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हुयो त मुंहं तोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ियल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कयो हो।

ॻाढ़ियो घंवर भरिसां जाम शाह खे पंजाह फुट घारो सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि रोठाणनि जो चवण आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समूह वटां जाम वाह शाह खे घारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो पर केर बि नाहे पहुतो। पंहिंजे तहत पाण घारो बंदि करण में रुधल आहियूं। हिकु वण सिंध अमर जे नाउ मोम जारी केटीएन न्यूज़ ऐं कावज़ जे सर ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03132525786।
8: जी हा 2315525786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

Please welcome back once again. Welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का हिस्ट्री. और वापस आ चुके हैं हम अपने सेगमेंट के साथ जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान. और हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से आप तक ये सेगमेंट पहुंचाया जा रहा होता है और इस सेगमेंट को सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और आज हमारे इस सेगमेंट में आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के गेस्ट मिस्टर शाहान अजीज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. और जी इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, हम ट्राई करेंगे कि शाहान अजीज को हम लाइन पे ले लें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है, हम इसको चेक करेंगे कि आवाज क्यों नहीं आ रही है.

0: नौजवान को चाहिए कि वो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को जो एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, एक आम किसान की प्रॉब्लम है, आम जिंदगी में हमारे मसाइल है, उनको देखते हुए अपनी एग्रीटेक स्पेशलिस्ट, फूड प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट या फार्म मैनेजमेंट में ऐसी चीजें लेकर आए या कदम रखें जिससे अपना वो एक मकाम भी बना सकें, आमदनी भी बना सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें।
1: बिल्कुल। अच्छा, अगर हम माजी की बात करें थोड़ी सी, तो माजी में बहुत से नौजवान जो कि ज़राअत को एक मुश्किल काम और कम मुनाफा वाला जो शुबा है वो समझते थे, अब आप क्या देखते हैं कि जदीद ज़रई कारोबार, एग्री बिजनेस इस तासर को किस तरीके से बदल रहा है?
0: देखिए, अगर हम आमतौर पर भी देखें तो हम AI टेक्नोलॉजीज के बारे में देख रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज के बारे में सुन रहे हैं, IoT सेंसर्स के बारे में सुन रहे हैं, ई-कॉमर्स हर तरफ चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो हमें दुनिया की भी सुगड़ गई, तो हमें कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है कस्टमर के साथ। हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, उन सबके दरमियान ऐसे चैनल्स बनाने ताकि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ज्यादा आसान हो जाए। फार्मर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर सकता है, हर थोड़ी जो चीज नई होती है ना वो मुश्किल होती है, लेकिन बेहतर फैसले जब किसान को मिलेंगे ना, जब किसान एक ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे उसको नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा, सही, उसके जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे, वो मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से रीच कर सकेगा, तो वो क्यों नहीं अडॉप्ट करेगा? किसी को भी अपना नुकसान अच्छा नहीं लगता, उसको फायदा ही अच्छा लगता है। तो इनोवेशन हम ये समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज अगर आप कर देंगे तो वो इनोवेशन नहीं, एक छोटी सी चीज जिससे किसी किसान या किसी स्टेक होल्डर की आसानी हो सकती है वो इनोवेशन है, उसको वो जरूर ओन करेगा। तो हम ये देखें कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दुनिया भर में लिया जा रहा है, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, तो हम जितना ज्यादा उसको एडॉप्टेबल बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर है, और वो करियर काउंसलिंग से भी आएगा, स्टूडेंट से भी आएगा, टीचर से भी आएगा, इंडस्ट्री से भी आएगा। तो ये गैप है ना हर एक स्टेक होल्डर के दरमियान, उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: ओके, आजकल के जितने भी नौजवान हैं, अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए ज़रई टेक्नोलॉजी, एग टेक, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और दीगर ज़रई ऑफ फार्म शुबों में कौन से नए मौके पैदा हो रहे हैं?
0: देखिए, स्टेट बैंक के बहुत सारे प्रोग्राम से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एग्री फाइनेंसिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो नौजवान इस सेक्टर को ले सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके अलावा जो मार्केटिंग के, फार्म मैनेजमेंट के शोबे हैं उनको देख सकते हैं, ई कॉमर्स गेटवेज जो है उसके अंदर आ सकते हैं, AI टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बासलायत हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रई कारोबार में आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इब्तदाई सरमाया, जमीन और खसूसी तरबियत जैसे मसाइल का सामना होता है, तो आप हमें ये बताइए कि इन रुकावटों के ऊपर जो है काबू पाने के लिए कौन से अमली इकदामात मौसर हल मौजूद हैं?
0: देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हर चीज कोई भी चीज बंदा माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, उसको सीखने की जस्तजू होना चाहिए, सही। हमारे नौजवान में शायद कमी कंसिस्टेंसी की है, हर चीज वक्त चाहती है, हर चीज को आपको समझना पड़ता है। तो आजकल बहुत आप सबसे पहले इंटर्नशिप बेहतर जगह पर करें, इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, एक्सप्लोर करें इंडस्ट्री को, फार्म्स को एक्सप्लोर करें, सक्सेस स्टोरीज पर एक्सप्लोर करें। जिन लोगों ने सक्सेस हासिल करी है उन्होंने एक रात में सक्सेस हासिल नहीं करी है, उनकी एक जर्नी है, उस जर्नी को समझने की कोशिश करें। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को आप अनदेखा नहीं करें, सही, आप चॉइसेस को अपनी प्रेफरेंस में तब्दील करें और जो आपको सबसे बेहतरीन चीज आपके सामने आ रही है उसको आप जज करें और उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि जो बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जज करने की, उन पर ना करें। मिसाल पर वालदेन भी समझते हैं कि डॉक्टर, फलाना, CSS ऑफिसर, यही सारे कैरियर्स रह गए, नहीं। बिजनेस एग्रीकल्चर जो है बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है कैरियर पाथवे के तौर पर। इंसान खाना पीना नहीं छोड़ सकता, इंसान की जो अहम तरीन जरूरियात जिंदगी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो किसी भी तरह की आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया के अंदर, आपने देखा कोविड भी था तो इंसान ने खाना पीना भी नहीं छोड़ा। तो ये एक ऐसा कैरियर पाथवे है जिसके अंदर अगर नौजवान अगर आते हैं तो वो पैसा, अपनी कैरियर की ग्रोथ, हर चीज हासिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए इस वक्त बहुत सारे नौजवान ज़रई शुबे का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं रखते हैं, लेकिन एग्री बिजनेस में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो आज से वो अपनी जो शुरुआत है वो कहाँ से और किस तरीके से कर सकते हैं?

0: देखिए हम ये बात कहते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं बर्डनला हेल्थ, यानी कि जो कुछ आपके पास है ना उस चीज को आप इस्तेमाल करें। हर एक इंसान के पास दिमाग है, सही है, उसको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सही है, चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा सरमाया नहीं बल्कि आपकी अकल, स्मार्ट डिसीजन होना जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी नॉन गवर्नमेंट के भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, सही है, नौजवान को चाहिए वो ज्यादा नेटवर्किंग करे, मार्केट अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए, सही, इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप छोटे पैमाने से शुरू करें, सही। मिसाल बहुत सारे ई कॉमर्स गेटवेज हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उन एप्लीकेशंस की रीच बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप बाहर के मालिक में देखिए, बहुत बड़े बड़े भी जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो ब्रांडिंग हुई है, उन्होंने इतना बड़ा नाम पैदा कर लिया, वो एक छोटी सी सोच से, एक किचन से शायद स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब वो दुनिया भर में छाए हुए, वो कैसे हुए थे, वो आपको एक उसको वक्त देना पड़ता है, अंतक मेहनत होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो वैसे ही बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उन चैलेंजेस को आपको अबूर करना है, इन्वेस्टमेंट को आपको हर्डल नहीं बनाना, आपको वेंचर अपने बनाने हैं इस तरीके से कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। AI की मदद से लोगों से जो आपने फर्स्ट हैंड चीज सुन ली थी उस पर आप यकीन ना करें, बल्कि उसको आप मजीद लोगों से मालूमात उसकी इकट्ठी करें ताकि आपको रियल प्रॉब्लम आपके सामने आए।
1: बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बहुत कम अमली तौर पे जो है ना जरिए कारोबार शुरू करते हैं, आपके ख्याल में इसकी असल वजह क्या है? माली वसाइल की कमी है, नाकामी का खौफ है, या कोई तजुर्बे की कमी है?
0: मेरे ख्याल से सारी चीजें हैं, सही, लेकिन सबसे बड़ा इसमें नाकामी का खौफ है। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है ना उसमें किसी तरह की उम्र की कैद नहीं, किसी जेंडर की कैद नहीं, उसमें सिर्फ इंसान शायद अपने सोच का कैदी होता है। तो आप सोच को तब्दील करने की जरूरत है, अगर आप डरते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हर फेलियर जो होता है ना वो एक नई सक्सेस का स्टार्ट होता है, सही। तो देखिए, हर मोमेंट पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वेंचर्स शुरू हो रहे हैं, वो फेल भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो जो कामयाब हो रहे हैं। तो हम सिर्फ फेलियर्स को देखें, हम कामयाबी की तरफ को देखें। मैं आप दोबारा वही चीज कहूंगा कि एग्री बिजनेस जो है ना वो हमेशा बरकरार रहने वाली चीज है, जब तक ये इंसान दुनिया में है, जब तक ये निजाम चलता रहेगा, जब तक ये चीजें मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अब डिजिटाइजेशन का दौर है, तो डिजिटाइजेशन में महारत बोले, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी से सोच ही कहते कुएं का मेंढक बनकर डाल रहे हैं, सही। आप कुएं से बाहर देखिए चल क्या रहा है दुनिया के अंदर ना, उस दुनिया को आप एक्सप्लोर करें, लोग क्या चाह रहे हैं वो आप उनको दें। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, हमारे पास वो चीज बनकर सामने आ जाती है। कैसे आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर हमारी आम जिंदगी में हर एक की निगाहें हैं, हमारा डाटा पर निगाहें हैं कि हम जो चीज सोच रहे हैं ना वो हमारे पास मार्केट में आ रही है। तो इसी तरह से एंटरप्रेन्योर को भी रियल लाइफ चैलेंजेस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मौके के तौर पर देखना है, चैलेंजेस के तौर पर नहीं देखना है, सही, ताकि उस और दूसरी चीज टेक्निकल नॉलेज जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं हमने कुछ चीजें पढ़ी और हम उस चीज के बाहर हो गए, नहीं, आप बाहर नहीं हो सकते। हर चीज तब्दील हो रही है, नई चीजें आ रही है, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीजों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अपना बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो शाहान अजीज आप हमें ये बताइएगा कि लास्ट में जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको कोई खास पैगाम देना चाहेंगे?
0: मेरा पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सही है। कहते हैं ना, जब तक आप पानी में कदम नहीं रखेंगे तो आपको समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। तो ना गहराई का अंदाजा होगा, पानी को चखेंगे तो उसकी मिठास या नमकीन का भी एहसास होगा। तो आप सिर्फ डरते रहेंगे ना, पहले देखिए सोच से कोई काम नहीं होता, पहला कदम आपको उठाना पड़ता है, पहले कदम के बाद ही आपको पता लगता है कि जमीन किस साख की है, आपको आगे कदम कैसे बढ़ाना है, आपको उछलना है, आपको रेंगते हुए चलना है, क्या करना है आपको, या आपको तैरना है या पानी है वहां पर, सही। तो पहला कदम लेने से बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, आप जितना लॉस बेयर कर सकते ना वो आप स्टेप लीजिए, सही। आप ये मत समझे कि आपको बहुत बड़े सरमाए की जरूरत है, हर आप इनके आपके पास जो आप कामयाब लोग हैं ना उनकी तरफ आप देखें, वो कामयाबी की सीढ़ी किस तरह से चढ़ रहे हैं। हसद नहीं करें, ये मत समझे कि उन्होंने चंद लम्हों में चंद हफ्तों में वो मकाम हासिल कर लिया, उन्होंने उन्होंने दिन रात एक करके वो मकाम हासिल किया है। तो आपको भी दिन रात एक करने पड़ेंगे ना, जैसे कहते हैं ना तब तक सोना कुंदन बनता है, तो आपको कुंदन बनने के लिए
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बन

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578 6
6: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो एक खुले सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: यार कुछ ॾींहनि खां जेल जो सूर जोड़नि जी तकलीफ़
2: बिल्कुल फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ जेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं जेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदो।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
5: जी हाँ 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. लास्ट में वापस आ चुके हैं जी. लास्ट में लकी कॉलर्स भी लेंगे और लास्ट में कुछ मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे. ओके जी, कॉल्स भी आप लोगों की हम पिक करेंगे. तो 0300011348 इसके ऊपर

0: एंटोनियो हमें सुन रहे हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. और इसके अलावा कॉल्स लेते हैं जी, लास्ट लकी कॉलर्स चेक करते हैं कि जी कौन है. हेलो, आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है चेक करेंगे. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अब्दुल कसूर बात कर रहा हूँ.
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी, मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ.
0: आज तो टंग ट्विस्टर है ही नहीं, आज तो हम टंग ट्विस्टर लेकर ही नहीं आए.
1: जी जी, मैं कल नंबर डाल के आया, नंबर नहीं लगा. आज की कॉल लगी है, मैं खुशी तमाम आ रही है. चार नंबर मिल चुका है.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा, लास्ट में आपकी कॉल लगी है तो आप मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है.
1: जी, किसी को मैं मैं क्या बताऊंगा, मैं तारीफ क्यों करूँगी? ये तारीफ करूंगा, तारीफ नहीं खुटेंगे, ये खुटेगा, रात खुटेगी, उसको तारीफ नहीं खुटेंगे.
0: तारीफ नहीं करेंगे,
1: तारीफ नहीं खुटेगी.
0: अच्छा, तारीफ नहीं खुटेगी. तारीफ नहीं खुटेगी, दिन खुटेगा. अच्छा, ये अच्छा था, दिन खुटेगा, रात खुटेगी, तारीफ नहीं खुटेगी. वाओ, क्या बात है. अच्छा, और कुछ?
1: हाँ, तमाम खुशी आ रही है.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई.
1: बाकी बहती गाना बताइए, मेरी बहन की सुनिए. ये फरमाश नहीं है, खुशी से नंबर मिलाया. जलाल कहने का नाम बताइए.
0: क्या क्या क्या टाइटल है इस गाने का, कौन से गाने?
1: जलाल कहने, जलाल कहने का गाना है. इसके लिए तीर करने छोटा चलता तुम्हारा लेकर बताऊँ.
0: अच्छा, ये इतना बड़ा नाम है इसका.
1: चलिए,
0: मैं इसको सर्च कर रही हूँ. अगर तो मुझे मिल गया तब मैं प्ले करूंगी, अगर ना मिला तो जो मैं प्ले करूंगी.
1: दूसरा कोई भी
0: चला. चले, फिर मैं जो प्ले करूंगी वो फिर आपको डेडिकेट करेंगे.
1: हाँ जी, आज मेरा तो मेरा बेटा है, धोखा लीजिए.
0: चले, जबरदस्त, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिए जी. जी,
1: दो भाई है, उसका नाम बताया.
0: ओके जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गालियों खिते में जारी तकरार गालिन जरिए हल करण ते जोर भरियो।

धांधलियुनि जी मास्टर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्त ईंदी। पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो बयान। पीपल्स पार्टी पंजाब अॻवान हसन मुर्तज़ा चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में नून लीग धांधलीअ जा नवां मिसाल क़ाइम कया। इलेक्शन कमीशन बि नवाज़ लीग जे एजेंट तौर किरदार अदा कयो आहे। सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधू दरिया हज़ारे सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रूपया हड़प कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंह टोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज़ शरीफ़ ख़त्म कयो हो।

शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 ऐं उर्स जूं तकरीबूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटी जा इंतिहाई सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुड़िस मां पांधीअड़नि जी आमद जारी आहे।

0: ठठे वेझो कोयले से भरल मालगाड़ी कलटी। रेलवे ट्रैक बंद झुंगशाही फाटक भरसा लोप लाइन ते कोयले से भरल मालगाड़ी कलटी थी पई। मालगाड़ी कलटी थियण सबब जानी नुकसान न थियो। हादसे सबब झुंगशाही वटा रेलवे ट्रैक बंद थी वयो आहे। पंजाब वींदड़ गाड़ियूं बीह वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। जब दंदल तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दो के समंदर साधु की बारिश राजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे से जाकर जमीन से आसमान जिंदगी से मौत सांस से तौर से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी आपकी खूबसूरती और जरा हमारा भी ये शौक बन चुका है कि आप लोगों को खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाते चले। अगर आप ये सीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं कि आप हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती के लिए मुकम्मल प्लान है जनाब। तो बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल अपना तारीफ करवाते हैं लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ मुखातिब है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कितनी सारी प्यारी प्यारी समाते हैं जो हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम में फुल ऑन एंजॉय करने के लिए रेडी शेडी हो चुके हैं। बिल्कुल जी साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ आप ऐसा कीजिए जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ और इन 2 घंटों में हम करेंगे जी इन्नी शाली बातें। तो यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और कसीदा सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा एंजॉय करने के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अगर आप भी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो जनाब लगाते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि खूबसूरतियां जो हैं वो आजकल आप लोगों को कैसे मिलेंगी. तो खूबसूरतियों के बारे में बात करेंगे लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कैसे करेंगे. और सबसे पहली बात कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है. तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी टॉपिक की जाने बात जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने बहुत से लोगों को देखा है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं. दुनिया में आप लोगों को हर तरह के जो है ना इंसान मिल सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आप ये कहते होंगे कि भाई ये इंसान आकर दुनिया में क्यों है क्योंकि वो इतने खड़ूस टाइप के होते हैं. अगला इंसान उनसे अगर बात करने बैठ जाए तो फिर जो है ना वो सोचता होगा कि भाई हम क्यों यहाँ पर बैठे. लेकिन कुछ लोग और ऐसे होते हैं कि वो बहुत कुर्बायती होते हैं. उनके साथ अगर आप बैठ जाए तो आपका दिल करेगा बस इनसे बातें करते रहे, एक लाइन इंसान बोलता रहे. लेकिन ऐसी एक और भी बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जो लोग कुछ भी नहीं यानी कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों आकर हंसे, हमारी जिंदगी में है ही क्या. तो आज मेरा सवाल आप लोगों से कुछ ऐसा होने वाला है. अगर आप फर्ज कर लें कि अगर हंसने पर पैसे मिलते, हाँ जी, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जिन लोगों की आदत है बिल्कुल भी नहीं हंसना, तो आप मुझे बताएं कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते. यकीन जाने मैं तो वे खरबपति होती. आप बताइए अपना, आप कितना कमा लेते हैं अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमाते हैं. बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हाँ जी जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही जनाब. आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. आप आइए और वहां पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आपने लाइक करना है, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, मुझे पता होना चाहिए. समझ रहे, वरना आप लोगों को मरा हुआ घोषित कर देंगे. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते, बताइए जरा मुझे. और इसी के साथ साथ अगर आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बताइए आपकी करीब

जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुई या अभी तक नहीं, क्योंकि भाई देखिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है प्रोग्राम को चलते हुए। अब आप लोगों के हर करीबी जनरल स्टोर पर वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, और आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अब जो है ना वो काफी टाइम हो चुका है, आप सुन भी रहे हैं कि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से क्या आप लोगों को फायदे मिल रहे हैं, तो लाजमी आप इस्तेमाल किया करें। और बाकी जो नए लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको नहीं पता, उनको बताएंगे जी, रोजाना आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट जब आप जाएं तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, बिल्कुल जी, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपको वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप कैसे अवेलेबल कराने वाले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये भी बताएंगे। और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम भी कहा जाता है। आदिल हुसैन हमारे पास सबसे पहले मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं ठीक हूं, बताएं। लिखते हैं कि तेरी नजरों को फुर्सत ना मिली वरना मर्ज इतना ला इलाज ना था, हमने वहां भी मोहब्बत बांट दी जहां मोहब्बतों का रिवाज भी ना था। ओके अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेन से, कहते हैं वेरी नाइस यो सिद्रा मुस्कान, प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड है, वेलकम सिद्रा जी सॉन्ग। चलिए भाई मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगी। अखलाक बलोच भाई कहते हैं यो सही गाला सही था जो। अच्छा नजीर कोसो भाई मैं सुन रही बलूचिस्तान से, आपको भी वेलकम कहा जाता है, कहते आज शायद तुम सिर्फ सबर कर रहे हो मगर कल यही सबर तुम्हारे लिए ऐसी खुशियां लेकर आएगा जिन्हें देखकर तुम कहोगे या अल्लाह अगर मुझे अंजाम मालूम होता तो मैं इस आजमाइश पर भी मुस्कुरा देता। सबर कभी जाया नहीं जाता, वो हमेशा किसी खूबसूरत अंजाम को जन्म देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल जी प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, यहाँ पर हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, कहती है अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और हमारे साथ ही हिदायतुल्लाह अहमद अन्नी, वालेकुम अस्सलाम, की आयो। और मुश्ताक अहमद कुंभर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वहीद वफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसे हैं। मुश्ताक अहमद कुंभर, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक जी, आप बताएं, माशाल्लाह प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू उसके लिए। और आदिल कहते हैं वो नहीं नहीं वो लड़की रोज ही आती है, वो लड़की कभी कभी घोसड़ू बन जाती है वरना तो रोज आती है। शाहनो बलोच हमारे साथ मौजूद है, रतो देरों से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। और रतो देरों से भाई याद आ गया हमारे साथ यहाँ पर नसरुल्लाह सुमरो भी ज्वाइन कर चुके हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम बाबा, असा भी अची वयासी को आहे जेको असांखे सुञाणे सबको तव्हांखे सुञाणींदो आहे अल्लाह, कहते असांजो दिल हले तो जो बलाइडो छा कयो अथव। अच्छा मोहम्मद आयलुन भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और मुमताज अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून चल रहा है। एहसन अरबानी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, मदद करे, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, लाड़काना की पहचान में भी आ गया, तबियत और मूड कैसा है, सब भी बहुत बढ़िया, आप बताएं। और हिदायतुल्लाह कैसे बैठे, लिखा है सिद्रा वैसे आज वो अदा आया है, हाँ जी नसरुल्लाह भाई आए हैं, वेलकम कहा जाता है उनको, और पता नहीं इतने कहाँ बिजी हैं कि वो प्रोग्राम में आना ही छोड़ चुके हैं। चलें जी, जो जो लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम में नहीं आते उनको बोलें भाई आया करें प्रोग्राम में, आप लोगों का प्रोग्राम है। और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, रुको जरा सबर करो, वापस तो आने दो मुझे, टाइम हो जाता है जरा, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर बदीन में माहिर ऐं मशहूर डॉक्टर कंसल्टेंट न्यूरोफिज़िशियन डॉक्टर शहबाज़ खान MBBS FCPS न्यूरोलॉजी फॉलोशिप स्ट्रोक फालेज लकवा मिर्गी जा दौरा पवण मथे जो सूर माइग्रेन चक्कर अचण या फेरी थियण पुठे ऐं कंध जे सूर जो ऐं नसुनि जो इलाज कंदो आहे। डॉक्टर शहबाज़ खान साहब हर जुमे जे ॾींहुं मंझंदि 2:30 वॻे खां 4:30 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो आहे। एड्रेस डॉक्टर अली नवाज टालपुर जी अस्पताल कोर्ट रोड बाईपास बदीन। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03117-3899-890।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਲ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਓਟੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
6: जी हाँ 231-5525-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ट्यूब है, व्हाइटिश ब्यूटी सोप है, व्हाइटिश फेस वॉश है, उसके अलावा व्हाइटिश हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन के मुताबिक है या नहीं, तो बिल्कुल आप लोगों की स्किन के मुताबिक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अगर नाइट क्रीम में नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन जो है वो ठीक ठाक रहेगी, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जब आप नाइट क्रीम में लगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोगों की उम्र थोड़ी उस एज में आ जाती है ना कि जिसमें आप लोगों को नाइट क्रीम में लगाने की नीड हो जाती है, तो आप बिल्कुल व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है जनाब, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती है, जबकि आपकी जिल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल खास अज्जा जो कि जिल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क है जनाब, एलोवेरा है, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ रात को खवातीन है, हर कोई इस्तेमाल करेंगे जनाब, हर किसी की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश का ब्यूटी सोप भी मिल रहा है और व्हाइटिश का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो चाहे आप साबुन इस्तेमाल करें या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। तो व्हाइटिश का जो सोप है ना, वो एलोवेरा, एवोकाडो और मिल्क से तैयार किया गया है। बाकी अगर हम व्हाइटिश के फेस वॉश की बात करते हैं तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है ये स्पेशली विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है विटामिन सी के साथ और विटामिन ई के साथ इसे तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपकी स्किन के अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो पूरी हो सकती है और आपका जो फेस है ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। तो व्हाइटिश का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जनाब। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइटिश लवली क्रीम की, तो ये जो व्हाइटिश की लवली क्रीम है ना, ये तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर इसकी जाने पाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ये जनाब एक फेयरनेस फार्मूला है जिसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि ये सोचते हैं कि भाई इस गर्मियों के मौसम में मेकअप कौन लगाए, भाई हमसे मेकअप नहीं लगाया जाता, आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, आपने कहीं जाना है, सुबह स्कूल जाते हैं या फिर आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, किसी भी लेवल पर आप लोग हैं, तो आपने व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है। और व्हाइटिश लवली क्रीम जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम से आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि भाई आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती वाजे हो जाती है, दूसरा ये कि आपके चेहरे पर जो ये आपको ऐसा लगता है ना कि हम बाहर जाते हैं, बाहर कामों से निकलते हैं तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, चेहरे पर ये जो सूरज के खतरनाक असरात आ जाते हैं तो वो भी आप लोगों के कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइटिश लवली क्रीम के अंदर विटामिंस के साथ साथ जो है ना इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करने के लिए है। तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप लाजमी लगा के देखिएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे लोग ही व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, खवातीन हो, आप सारे लोग व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को जरा मुकम्मल कीजिए। और व्हाइटिश लवली क्रीम हो या फिर व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो, इन दोनों को इस्तेमाल करने के क्या तरीकेकार हैं तो वो अगर आप लोगों को बताया जाए, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर हम व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बताएं तो ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, रात में लगाएं, सुबह को लगाएं, जब दिल करे तब लगाएं, बस आपने अपना फेस वॉश करना होता है, अच्छे से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद व्हाइटिश लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और इस तरह लगाएं भाई, बस आप ऐसे लगाएंगे जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। तो फेयरनेस फार्मूला जो है ना, आपने बहुत सारे फेयरनेस फार्मूले लगा कर देखे होंगे, लेकिन जब आप व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे बाकी सारी क्रीमों को। तो व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा भाई, हमारे घर में भी यूज होती है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल की चीज है। और ऐसे ही बिल्कुल जी व्हाइटिश का जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों के लिए गाने भी लगाते जाएंगे, हम गाने भी
थोड़ा सा सुनते जाएंगे, बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ। और हाँ, अगर टॉपिक की बात की जाए तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है। सवाल बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर हंसने पर पैसे मिलते, हंसने से पैसे मिलते, तो आप कितना कमाते?

வாஞ்சி முரளி வியாசிங் பாபா. हाँ तुम सोची ना हो अचान से निगत के छो हलो अ मुझी मर्जी. ये जो पहला मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो दूसरा लिंक होता है ना, ये मेरी मर्जी के गानों का होता है. ये मेरा फेवरेट लिंक है, समझ रहे हैं. बाकी में तो आप लोगों के पसंद के गाने सुनते ना, कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते पसंद, लेकिन हमें लगाने पड़ते हैं. तो बस वही बात है. तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी. प्रोग्राम की पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा. और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन हमारे साथ हैं जी. इमरान खान रुख हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम और वेलकम कहा जाता है. चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. मेरे लफ्जों से मात मुमकिन ना थी. ओके ओके. सो उसने मेरे जज्बों से वार किया. वाह वाह वाह वाह. सही समझी यासी. कहते मेरी तो उसने हंसी बंद कर दी है. पैसे कैसे कमाऊंगा, योर टॉपिक आंसर. अच्छा किसने बताएं जल्दी. अच्छा अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक का आंसर फिर ब्रज खलीफा मेरा होता. बाबा. अच्छा ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल कहती आज से आपके सवाल का जवाब है. अगर हंसने पर पैसे मिलते तो पहले आप पैसे लेती, क्योंकि आप बहुत हंसती हैं. माशाल्लाह आपको सलामत रखे जी. वो तो मैंने आते ही बोला कि मैं खरबपति होती. आप अपना बताएं आप कितना कमाते. हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे हंसाने वाले तुम होगी तो बहुत, वरना जीरो कमाते टॉपिक आंसर. ऐसा मतलब आप बिल्कुल कम हंसते हैं, ऐसा क्यों. अच्छा मोहम्मद सलमान कहते हैं नाइस टॉपिक. आपकी अमाउंट को हमारे साथ. अच्छा सोच ले कहीं ऐसा हो ही ना जाए. अच्छा पैसे तो इतने ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन फिर ये बताएं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते या फिर नहीं. क्योंकि असल बात ये आ जाती है कि आप थोड़ी सी कंजूस हैं. आप लेते नहीं है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो लिया करें. वैसे जब हंसने पर पैसे मिलते तब तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो मुझे यकीन है कि आप बांटते वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, है ना. है ना बिल्कुल जी. जियो करें

हाउ सही वाह जो गानू आओ ना खायलावा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई जान को और हाफिज यूनिस बाबर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अली अकबर बिरोही भाई आपको भी खुश आमदीद आपका गाना लगाते हैं नसरुल्लाह भाई कहते हल असान जा अन्या ताई फेन आए न मां समझो हाणी असान के विसारे छड़ियो हुंदे ना बाबा भुला आया तवा जी अच्छा उनका अलावा किशोर भाई कहते हैं हाय हेलो स्मार्ट हाजिर है आपकी बातों में आने के लिए ये बढ़िया था भीड़ू अच्छा उनका अलावा क्या कहते हैं टॉपिक जितना आप अमीर होती उससे थोड़ा सा कम मैं भी होता यू नो यस यस आई नो मेरे भाई हैं तो मेरे पास में ही शायद आपका भी बंगला होता है ना

खाओ बाबा दिल चे थी तुझे नालो मां सुकून रखी सजा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो बाबा कंजूसियों छाजू आन इते भी कंजूस नथा मुड़ो न माना ओके जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए नहीं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो बुधायो केड़ो प्रोडक्ट आए जेको तुम्हें इम्प्रेस करी चुका है केड़ो प्रोडक्ट आए जेको तुम्हें इस्तेमाल कयो पया सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे लिए वाइटिश ब्यूटी क्रीम आ जेका तुम्हें जानो था बाबा नाइट क्रीम आए तुम्हें इस्तेमाल करना तो तुम्हें वाह जी खूबसूरती मिलंदी आई वाइटिश लवली क्रीम के बारे में भी तुम्हें खबर आ ये फेयरनेस क्रीम आई इनके तुम्हें इस्तेमाल करना मतलब मेकअप के तौर पर भी कर सको था वैसे भी अगर तुम्हें कोई फेयरनेस क्रीम में सुठी न लगंदी आ सूट नथी करे तो वाइटिश लवली क्रीम जो ट्राई करो बाबा ढो भलो प्रोडक्ट अव डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की तरफ अचू था।

हाओ बाबा वाजू गानो हुयो कुछ मानुन जो नालो जेको आ सुकून त ठंदो आ पर कुछ मानुन जो नालो वेरी समझी वे हुंदा सो ही वारो गानो सब देंदा सी सेविस जी आवाज में ही सॉन्ग आए डाडू वीआईपी गानो ताके पसंद ईदो ना छी त पैसा वापस कंदा सी मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मोहसिन अली बिरोही एंड मोहसिन अली मोहसिन अहमद बिरोही एंड मोहसिन अली बिरोही दोनों हमारे साथ है मीरो खान चौक लाड़काना से आपको खुश आमदीद कहा जाता है और ये हमारे साथ भाईजान कहते हैं अदा मुखे कल शाम फील थियो के जो गानो न हलंदो आ त कावड़ छो कंदा यो फील थियो या बस तो उन्हें का पुछंदा सी जेके कावड़ जी वेंदा है समझो था अली मुर्तजा कहते हैं सलाम एंड गुड आफ्टरनून आई एम हेयर टू पगड़ में यूनिवर्सिटी टू लाइब्रेरी में विदाउट बिजली बाजी ने आपकी तरह मेरा मुंह बनाया हुआ है अरे भाई मैंने कल आपका गाना लगाया तो था नहीं सुनाता था वैसे बिजली जी बाय मोमा न कर जो थे मुझे लगता था अंग्रेजों ने कुछ चीजें बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए मगर हम हाँ भाई हम आदत से मजबूर हैं हकीकत आओ असा के वही आदत पे सी वेंदी सही आयो सही आयो सच्चा आयो और किशोर भाई कहते हैं कि इंसान को समझने के लिए उसके साथ रहना जरूरी नहीं होता बाकी समझना सीखी अच्छा अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदी तथा खाली तमाम गाने की फरमाइश कया ठीका ठीका हलायूं था अच्छा कुछ वाकई चीजें ऐसी होती हैं जो कहनी नहीं पड़ती बस वो महसूस हो जाती है

सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधू दरिया हज़ारे सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटशाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रूपया हड़प कंदड़ मटियारी जा ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंह टोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तम कयो हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, दोनों अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग पहले जान लेंगे कौन सा प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा अगर आप ये चीज समझना चाहते हैं कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो इसमें तो आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या कमाल है जी. टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम कैसे और क्यों इस्तेमाल करेंगे तो वो आप लोगों को अभी बताएंगे, क्योंकि पहले घंटे में आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और दूसरे घंटे में आप लोगों को टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है. तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो भाई कोई हर्ज नहीं है और बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, ये थोड़ी सी दाजी ताक है. सो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है और ये दो प्रोडक्ट अभी तक बने हैं और ये जो दो प्रोडक्ट अभी बने हैं ना, ये इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि आप वाकई कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसको बब्बा वडेरा माणू आनंद आए. तो तब अगर ये एहसास नहीं था फीलिंग हासिल करना चाहिए तभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी ट्राई करें. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी खास कर उन मानों लाइ भी तैयार कई वही है जिन्हें चेहरे से जो स्किन घनी सेंसिटिव होंगी है, सेंसिटिव स्किन के हुजन से तवाज स्किन का भी क्रीम सूट ना कहती इन गाल के वठी करे डाडो परेशान वेठा तो बाबा तांजी परेशानी के दूर कयो विंदो आई तवांजी परेशानन के समझो विंदो ई तवां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मशवरो दिनो विंदो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तवां हणदा तो तवांजी सेंसिटिव स्किन भी सफा सही थी वेंदी आई तवांजी सेंसिटिव स्किन ते भी सूट कंदी आई तवां के बुधाईंदी हला त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका है ही मेडिकेटेड फार्मूलो आ हनके डॉक्टर्स ठायो आ आई जदा ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदा ना त उन जे मथा भी तां के डॉक्टर माई जो फोटो नजर इंदो त ही डाडो भलो डाडो वीआईपी प्रोडक्ट अथव आई का भी टेंशन जी गाल ना कोई भी अड़ी इन अंदर चीज ना एड जैमें तवा के लगे तो बाबा केमिकल हों ये बिल्कुल भी ना है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तैयार कयो वयो है जिन के अंदर तवा के मिलंदो माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन वाइटामिन ई बीट अल्फा अरबुटीन कॉजिक एसिड ग्लूटाथायोन ये सब जो चीजों हैं तवा स्किन के लिए डाडी बेहतरीन डाडी फायदेमंद होंदी है. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स तो डिठो वे तो पाकिस्तान में तो तवा मिली पर पाकिस्तान का बाहरन मुल्क में भी तवा मिली वो ही प्रोडक्ट आई उन अलावा मार्केट में तवा वा ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो वी परचेज कर सो तवा अगर नालो कुछ मानो जो कॉल से वेचारा चवंदा तो डी अलाय चवंदा मुख्य मतलब याद न हो मतलब उनके सही तरीके से नालो न इंदो चवण तो अगर तवा भी नालो न होजे तो तसो तो डब्बे माई जी डॉक्टर माई आ क्रीम तटो ठीक है डब्बे से माई जी डॉक्टर आए इन गाल में समझो तो ही बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवे हर करीबी जनरल स्टोर से तवे मिले पी उन अलावा अगर न भी मिले पे तो तक नंबर बुधाई जैसे तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सो ये छो तो लगे जो मैं नंबर ना बुधा हाँ शायद ना बुधा. ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी ये बाबा नाइट क्रीम है सो उनके तुम आज टाइम इस्तेमाल करना डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तक डी स्किन जो फेस वॉश मिली रो है डी स्किन की फेस वॉश की गाल क्यों तो बाबा डी स्किन जो फेस वॉश तो ढो भलो आ वाह वाह सफाई तक एहसास तो तेडी न भली शे इस्तेमाल कर रहा है. डी स्किन जो फेस वॉश जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है तवे स्किन के हाइड्रेट कन् तवी स्किन के मॉइस्चराइज कन् तवी स्किन के क्लीन कन् डीपली क्लीन कन् सो तवा भी लाजमी डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करी दिसजो आई नथो मिले तो तवा के पांजे करीबी जनरल स्टोर से वनो न त मालूमात वठो अगर मिले तो बढ़िया नथो मिले तो तवा के डायल करना है नंबर से ही बुधाया पई नंबर से तवा राबतो लाजमी कजो नंबर से राबतो करन जा ये फायदा होना है तवा उनन का मालूमात वठी सकंदा आयो तवा उनन के बुधाईना त बाबा फलाणी जगह ते तवा जा प्रोडक्ट कोन था मिलन आई हु तवा के गाइड करना त अगर इते नथा मिलन त तवा के हता वनी वठना या फिर वो तवा जे करीबी जनरल स्टोर से ही अवेलेबल कराए सडीदा. सो नंबर आहे नोट कयो जरा Zero three one two five zero two five nine zero seven. आई जना बो नंबर अगर नथो लगे तो वरी तां जला बो नंबर भी आए वो भी तां नोट करे सको था बो नंबर आए 0333 273 8 4309 0333 273
4309 नंबर्स तव्हां डायल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं भॼंदा वञो वठी अचो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश वठी न ईंदा लॻाईंदा न त ख़बर कीअं पवंदी त वाकई प्रोडक्ट में दम आहे ऐं प्रोडक्ट तव्हां वठो बाबा इस्तेमाल कयो पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो अगरि तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु न रखंदा त तव्हांजी स्किन बि ॾाढी ख़राब थी वेंदव ऐं तव्हां बि पंहिंजी उमिरि खां इलाही वॾा लॻंदा त पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु कयो पंहिंजे चेहरे जी हिफ़ाज़त कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो।

ओगरी मामा जमान भाई बिल्कुल आपका रिएक देख लिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। बाबा इन लाइ चवां थी त बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां केॾा ख़ूबसूरत थी विया आहियो। ऐं उन खां अलावा अली अकबर बिरोही भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। वफ़ा शहज़ादो मक्सी हमारे साथ लाड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ऐसन कहते खिलण ते पैसा मिलन त पोए खिलण ते पाबंदी हुजे। हाँ छो जो माण्हू असां खे अमीर थियण ॾींदा, सोचो सभ खां पहिरियां साड़ोला माइट। वाकई वाकई इन ॻाल्हि में दमा बाबा, इहो त असां सोचो ई कोन हुयो। अच्छा मुमताज कहते हैं कि अदी सिद्रा लगे तो तवां ये क्रीमू असां के हणी भूरा करण चाहियो था। घर वारा असानी शादी बिल्कुल या गाल आए जदी तवां भूरा थीना पो तवां के मानू सडे रिश्ता दींदा। सो तवां भी कोशिश कयो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, भूरा सफाई बाहे थी वेंदा। सो लाज़मी तां ट्राई करे डिजो डी स्किन ब्यूटी।

बाबा हाणे मोबाइल जो दौर आहे हर कंहिंखे मोबाइल हथ में आहे सो तव्हां पंहिंजे मोबाइल में लिखी सघो था इहो नंबर बसि तव्हां लिखो नी मतिलब सेव कयो पाण वटि उन्हनि खे कॉल कयो मैसेज कयो ॾिसो बाबा फलाणी जॻह ते तव्हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिले मोहसिन लिखे थी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम अली मुर्तज़ा लिखते हैं कि खुश कौन कमबख्त नहीं रहना चाहता हंसना कौन नहीं चाहता बट एज यूजुअल लोगों का बस चले हथौड़े मार दे क्योंकि हंसना मना है मेरे इर्द गिर्द और यहाँ भी सही बात है वैसे इधर तो खैर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा माहौल ठंडा हो चुका है लेकिन ये हम मतलब सोच ही सकते हैं कि कभी हमारा शो ऐसा हो कि एक भी नेगेटिव पर्सन ना हो सारे लोग पॉजिटिव हो तो कितना ना अच्छा रहेगा

ओ बाबा हते ही कोई रखो हाँ ऐसा कहते हैं डी एस चवंदा आहिनि बिल्कुल बिल्कुल डी एस क्रीम डी एस क्रीम ना आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ॾिसो मुंहिंजा लिसनर केॾा भला आहिनि सभु चीज़ूं नोट कंदा आहिनि अच्छा सो बिल्कुल तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो नालो सही तरीक़े सां वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञी तव्हां वठी सघो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां उन खां अलावा नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो कंदा रहो सही आहे उन्हनि जो जीअण हराम कयो हुननि खे ॿुधायो बाबा असां लॻाइण चाहियूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले कोन थी पियो हिदायतुल्ला कहते हैं कि जो भूख रात को लगती है वो दिन में नहीं लगती और जो नींद सुबह के वक्त आती है वो रात को नहीं आती हाय मेरे निके निके दुख

वाकई मूंखे ही नंबर जेके ॿुधायां पई सिंधी में यादि कोन्हे. मां यकीन कंदा रोज़ कोशिश कंदा त तव्हांखे सिंधी ॿुधाईंदमि, पर ई लॻे थो थोरा मुश्किल आहिनि. अच्छा ॾिसो ॾिसो बाबा, तव्हां बि ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. ममताज़ भाउ कहिड़े डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमामु सुठी आहे, अॼु असां लाइ सॉन्ग हलायो फ़ाइज़ा अली. हाज़िर हाज़िर फ़ाइज़ा अली हलायूं था.

बिल्कुल शो नंबर भी आहे वो कुछ दिन खां पोइ ॿुधाईंदव ओके वासु भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है

0: अॼुकल्ह वॾड़ा बि सही सलाह नथा ॾे कारी वञू
1: असां
0: अॼुकल्ह वॾड़नि खे भिलाए छा थी वियो असां चेंजिस खे कुझु सम्झ ई न आशिकली मला हमारे साथ फ्रॉम बकर अबड़ो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम डेडिकेट कीजिए अली आजम अबड़ो गुलाम मुस्तफा अबड़ो और आजम अली बुगियो गाना तो आपने लिखा ही नहीं वेलकम कहा जाता है आपको और ये हमारे साथ हैं जी मोरो खां कामरान लगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे सिस्टर हमें सनम मारवी का सॉन्ग सुनाइएगा डेडिकेट इमरान लगारी और दरबन अली हमीर खान हक मौजूद जी सदा मौजूद खुश आमदीद कहा जाता है और जी हमारे साथ ही चाचा खाली तमाम गाने जी फरमाइश कई तमाम जो राशा कशा गानो हली वे राशा कशा बस हाँ तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणने की तैयारी पकड़ो रसूलाबाद से आबिद सिंह शंबानी भाई वालेकुम असलम टॉपिक अदी पैसों की गिनती के लिए कोई और रख लेता मैं तो बस हंस हंस के पागल हो जाता सही गाल बाबा सही गाल अच्छा ये हमारे साथ है माँ भी करोड़पति हो जहाँ मकसूद मलाह हमारे साथ है ओके जी मेहरापुर से मकसूद मलाह हमें सुन रहे थैंक यू बशीर लिगारी गोठ मीर खान लिगारी वालेकुम असलम सिस्टर तुम कहीं आयो भा मसफा भलीता बुधा कहीं आयो और ये हेलो आई एम जाकिर जख्मी बलोच फ्राम कोटड़ी कबीर जाकिर वरी जख्मी वरी बलोच भा खुश आयो नी और सजात अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले कीजिए मुमताज मोलाई पैसो डिठो थी हाजिर हाजिर हलाई होता ये कहते हैं वैसे तो पैसा कोई देता नहीं लेकिन मगर कोई 10 रुपए भी दे दे तो मैं सारा दिन हंसता रहूं
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की FM 93

प्रोग्राम बुध पाया ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड है मौजूद है चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बत और समाद और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

तमारी डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम हुजे लगायो जी तमा के खूबसूरती मिले आई तमा वाह वाह वाह कयो वाह वाह आई अगर तमा जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना तो पोई तमा छा के ना पोई तमा के नंबर्स ते राबतो करनो आहे आई नंबर तमा लाजमी डायल कयो बाबा नंबर्स डायल करे उनन के बुधायो तो तमाजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम या वरी वाइटनिंग

ओके जी ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधो असीं ॿियो बि हिकिड़ो गानो ॿुधंदासीं पर तव्हांजा मैसेज आहिनि उन तरफ़ बि अचूं था ऐं पैनल ते शहबाज जमाली भाउ सां गॾु मौजूदु आहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्यारा भाउ प्रोग्राम खे इंजॉय कयो मायरा सां गॾु मौजूदु आहे मायरा तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया थैंक यू वेरी वेरी मच और हमारे साथी जी फज़ीला सिंधी की अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को टॉपिक कहती है कि मैं कम हंसती हूँ और रोती ज्यादा हूँ इसका मतलब आप गरीब होते और कहती प्यारी ये तो आपने करना है ना मेरे हिस्से का जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ बाकी जो आपके हिस्से का काम है वो आपको करना पड़ेगा और कहती है मेरी अम्मी भी आपका शो सुन रही है और कहती है कि सिद्रा को सलाह अच्छा तो बोले अम्मी को मुझे सलाह दे मां चवण वठंदी आहियां अलाए मां भली आहियां मां सुठी

दिल केड़ू केड़ू गालू चवंदो आ बाबा इन लाइ चवंदा आहिनि त दिल जी ॻाल्हियुनि ते थोरो घटि हलणु घुर्जे और ए मंसारी कहते मेरे सरकार का भी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम आदल कहते हैं वाह सही वाह नाइस सॉन्ग थैंक यू डिस अच्छा ममता सां की दी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करनी पवंदी बाबा इस्तेमाल कयो घर वारनि खे राज़ी करे वठंदासीं तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो हुननि खां मालूमात वठो सही मिले नथा अच्छा वासु भाई थैंक यू तव्हां सां गॾु आयो चाचा ख़ालिद खे थी उस्ताद

0: हांजी मोटी आयो आ मोटी खेड़े असा नंढड़ो भाव प्यारो भाव किशोर भाई कहते असा खूबसूरत थी वया नायो असा बचपन का खूबसूरत आयो तदे तो रोज टीपी चेंज कयूं था केर करे त देखारे रोज रोज या गाल आयो के मणण मुराद वाणा मेरे
1: नजर
0: हिकड़ी छोकरी आहे उहा बि रोज़ डीपी चेंज कंदी आहे समझी विया हूंदा छोकरीअ जी नज़र नथी अचे अलाए किथे

प्यार से मैं तो पॉजिटिव हूँ, बाकी दूसरों का पता नहीं। बिल्कुल जी, बस आप पॉजिटिव रहिए, दूसरों को हम देख लेंगे। और हमारे साथ ही जी छा गए थे असा। यह गाल जेको है ना सो कहीं कहीं जेंदर होंगी आई, हमेशा तवा के पॉजिटिव रहो है, नेगेटिव रहंदा तो पो खराब थी वेंदा। बासी सो सोना सोना थियो, पॉजिटिव थियो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के सफा सोनो बनाए छड़ी, तां मर्द आयो मायू आयो सब लगायो।

की पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई है विलेज। ओके जी वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारे भाई को। विलेज थोड़ा मुश्किल था। और ममताज भाई जी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और दीदार अली बिरोही हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी। सोचा आपका हाल ही पूछ लूं। दीदार बिरोही लाल शाह बड़ी से। दीदार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं।

बिल्कुल जी, री स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपका मुखड़ा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अपने मुखड़े का जरा ख्याल रखिए और री स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। री स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ये तो फायदा आपको हो ही जाएगा कि री स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के चेहरे पर जो है ना, ये जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसले मसाले, वो सारे दूर हो जाएंगे। और ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। री स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको री स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आप लोगों को खूबसूरती मिले वो भी। मुकम्मल वाली

डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि घुर्जे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे न विसार जो ये न कजो ये न कजो ये न कजो अल्लाह साईं ॾोह ॾींदव अच्छा अच्छा त चओ किशोर भाई उदासी में दॿजी वई हूंदी साईं था चओ अलॻि ये लड़की इतना उदास रहती ना कि मैं सोचती हूँ कि भाई एक इंसान इतना उदास कैसे रह सकता है अच्छा वासु भाई हाँ जी बिल्कुल वठूं था मोकल बाबा तकड़ी शादी अथव वेहो त नसरुल्ला भाई कहते बाकी कुराड़ा ऐं कुराड़ियूं काड़े वञनि उहे बि लॻाए न बिल्कुल बाबा सभु लॻाईंदा सभिनी जे लाइ टी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे कुराड़ा त लाज़मी लॻाइनि जवान थी वेंदा

अच्छा मोदिया से थानी भाई वालेकुम अस्सलाम। हाले सुल्तान हमारे साथ है। हेलो स्वीटी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी आपको भी वेलकम हो गया जी। अली चौ था अज मुखे न चे जा पंज बजे अच जा था लाजमी अच जो अच्छा नहीं, जिन लोगों के मैसेज नहीं पड़े ना तो वो ऊपर चले गए होंगे, तो आप समझ जाइएगा। डॉलर तो घुर्जे बाबा, फॉर्चूनर भी घुर्जे, जानी भी घुर्जे, जानी लास्ट में घुर्जे, पेड़ा सब कुछ। अली मुर्तजा कहते हैं बुख लगे ना सही बुखार लगी वे ना सकी कता वैसे अमी भी यही चवन दिया।

बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो कुछ चीजें मैं नहीं समझती आज हाँ मैंने ये परंपरा को तोड़ दिया कि लास्ट सैडी लिंक में हम सैडी गाने सुनेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ, आज हमने अच्छे अच्छे गाने सुने हैं। देखिये कितना मजा आया, लग ही नहीं रहा कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है लेकिन खत्म हो चुका है। तो वरी तब से मिलूँ था बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो बिल्कुल जी 5 बजे वाली प्रोग्राम में ज्वाइन कजो। उन अलावा किते का गलती थी हुए, किंके का गाल बुरी लगी हुए, कि जो गानो रहती वही हुए, तो बाबा माजरत कयूं था। जी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटी जा प्रोडक्ट्स तमा लाजमी लगाए डिजो। जी सुना सुना थियो, पाला पाला थियो, खूबसूरती तमा के कारे भी छड़े न वने, ठीक है। सो 5 बजे ज्वाइन करना, मोकलानी ना है। सलामत, सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: केपी के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई बटी दहशतगर्द मार्ज वया। एसपीआर मूजिब केपी के जिले खैबर में ऑपरेशन दौरान 24 दहशतगर्द मारा वया। सवात इलाके मटा सवात में पुलिस ए सीटीडी के ऑपरेशन दौरान 4 खारजी मार्ज वया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्दन के जहनुम भेड़ो किया। मार्ज वयल दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद हथ किया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नवाज शरीफ पहिरियों भेरो वॾो वज़ीर धांधली करे थियो, ॿियों भेरो वज़ीर आज़म असगर ख़ान जे करे थियो, टियों भेरो वज़ीर आज़म आरो इलेक्शन सबबि बणियो। अॼु बि खेन वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर आला जी कुर्सी फारम 47 सबबि मिली आहे। ही नसल दर नसल धांधलीअ जी पैदावार आहिनि। हुननि खे कश्मीर में धांधली करण न ॾींदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जा मुज़फ़राबाद में नवाज लीग ते वार। चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त ही मुज़फ़राबाद आहे, श्रीनगर न। अवां खे धांधली करण न ॾींदासीं। धांधलियुनि जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्त ईंदी। पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जे पीपल्स पार्टीअ ते टोक। नवाज़ शरीफ जी आ मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज़ जाली मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर आला थी आहे। हाणे घणो थियो नवाज़ ली खे धांधली करण न ॾींदासीं। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जी लीना मेमण जो मरियम नवाज़ खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मरियम नवाज़ तव्हां न पर फारम 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई जड॒हिं अव्हां खे हैराती मैंडेट डि॒नो वियो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़रिए इक़्तदार माणण चाहे थी। राजा परवेज़ अशरफ चयो त चूंड धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियण घुर्जे, जायज़ शिकायतूं हल थियण घुर्जनि। असांजो मज़ाक उॾायो वेंदो त नतीजा बि निकरंदा। विच ओवर में नई जंग जी शुरूआत। आयल रिफाइनरी ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमेरिका सां गॾु इराक में कार्रवाई। ईरान जे आर्मी ग्रुपनि जे थाकनि खे निशानो बणायो। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारी वज़ारत चयो आहे त आयल ते हमिलो कंदड़ ग्रुप्स खे निशानो बणायो आहे। मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी ते को बि ठाह न थींदो। अमेरिकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तसदीक कई वई। इराकी विड़ाक ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी। ईरान जा उर्दन में अमेरिकी हलनि ते मिज़ाइल हमला। उर्दन पारां 5 ईरानी मिज़ाइल नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तसदीक। अमेरिकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरान तर्फ़ां फायरल कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासदार इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अॾे ऐं सेनेट काम जे मर्कज़ी खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिज़ाइल नाकारा बणाया विया।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सुपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मैं कश्मीर को कश्मीर देखना चाहता हूँ। वो नस्ल दर नस्ल जो दानली के पैदावार है वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको दानली करने देंगे। कश्मीर का फैसला ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पख्तूनख्वा ना बलूचिस्तान कर सकता है। कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद करेगा, कश्मीर का फैसला मीरपुर करेगा और कश्मीर का फैसला पूंछ और रावलाकोट करेगा।
2: नवाज शरीफ पहिरियों भेरो वॾो वज़ीर धांधली ज़रिए बणियो। पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म केसर ख़ान केस जे करे थियो, टियों भेरो वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन सबबु बणियो। अॼु बि खेनि वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर अला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबबु मिली आहे। बचो बचो ॼाणे थो त ही नसल दर नसल धांधली जी पैदावार आहिनि। हुननि खे कश्मीर में धांधली करण न ॾींदासीं। बिलावल भुट्टो सरदारी जा मुज़फ़्फ़राबाद में नवाज़ ते वार। चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त ही मुज़फ़्फ़राबाद आहे, श्रीनगर न। अवां खे धांधली करण न ॾींदासीं। ही चवनि था त कश्मीर खे पंजाब बणाए छॾींदासीं। तानो ॾियनि था त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो, पर मां कश्मीर खे कश्मीर ई ॾिसण चाहियां थो। कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलूचिस्तान न, पर कश्मीरी पाण ई कंदा। कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे।

धांधलियुनि जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टी ते टोक। नवाज शरीफ जी मरियम नवाज भी चोर दरवाजे का इक़्तदार में आई है। मरियम नवाज जाली मैंडेट जरिए सीटू हासिल करे वजीर अला थी है। हाँ घणो थो नवाज लीग के धांधली कर नींदी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन जो मरियम नवाज के जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे तो मरियम नवाज तवा न पर फॉर्म 47 जो नशो गलाय रो है। क़यामत 2024 में आई हुई जडे अवां के खैराती मैंडेट डिनो वो। नून लीग आजाद कश्मीर में भी धांधली जरिए इक़्तदार माण चाहे थी। राजा परवेज शरीफ चयो त चूंड धांधलियों जो सिलसिलो हाँ बंद थियण घुर्जे। जायज़ शिकायतूं हल थियण घुर्जन। असो मजाक उड़ाए वो तो नतीजा भी निकरंदा। विच ओभर में नई जंग की शुरूआत। आयल रिफाइनरीज ते हमलन बाद सऊदी अरब के अमरीका से गड इराक में कार्रवाई। ईरान की हामी ग्रुपन के ताकत के निशानो बनाया। सऊदी अरब के दिफा वारी वजारत है आयल रिफाइनरीज ते हमलो कदड़ ग्रुप्स के निशानो बनाया है। मुल्की सलामती खुदमुख्तारी को भी था न अमरीकी फौज पारा भी इराकी ग्रुप्स खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक कई वही। इराकी विराक ग्रुप हमलन में 20 जन के मारजन की तस्दीक कर छी। ईरान जा उर्दन में अमरीकी अड्डन ते मिसाइल हमला। उर्दन पारा 5 ईरानी मिसाइल नाकारा बणण जी दावा। अमरीकी फौज पारा उर्दन में ईरानी हमलन जी तस्दीक। अमरीकी फौज ईरानी हमलन जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तरफा फायर कयल समूरा मिसाइल दिफाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासा इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे ऐं सेंट कॉम्प जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिसाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिसाइल नाकारा बणाया विया। ईरान आपना हरमुज़ इंतज़ाम बाबति इलाक़ाई निज़ाम जोड़ण वारी तजवीज़ रद्द करे छॾी। आपना हरमुज़ में टीं धुर जी शमूलियत क़बूलण खां इनकार। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबादी चयो आहे त उमान जे अपनाए हरमुज़ खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो घुराइण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जे हदनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं उमान पंहिंजे सामूंडी हदनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। उमान ईरान जो अपनाए हरमुज़ बाबति मनसूबो रद्द कयो त हरमुज़ बंदि ई रहंदो। कुवैती परदेही वज़ीर शेख जरा अल अहमद अल सबा जी नायब वज़ीर आज़म सागर सां मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार सीड़पकारी ऐं दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। परदेही खाते पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त मुलाक़ात दौरान पाक कुवैत लाॻापन समेत वितरफ़ी सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि ख़ते जी सूरतयाल ऐं सिफारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो। कुवैती परदेही वज़ीर ख़ते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी साराह कई। خیبر پختونخوا ایں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی 32 دہشت گرد مار جی ویا آئی ایس پی آر موجب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا ویا بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آپریشن دوران 8 دہشت گردن کے جنم بیڑو کئی ویو مار جی ویل دہشت گردن وٹاں ہتھیار ایں بارودی مواد ہت کیو ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی ایں بین پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کارروائی کے فورسز کے بھیٹا پیش آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی بڑھل تنظیم فورسز ایں پولیس تے حملہ کیا شہرین کی ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا کہ بھی جتھے کے فورسز ایں پولیس تے حملن کی اجازت نہ آزاد کشمیر کی پولیس ترجمان چیو ہے تا یہ پرامن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جو جتھو بنجی چکی ہے پولیس ایں فورسز تے حملہ کرے رہا ہیں جتھن کی فائرنگ میں رینجرز اہلکار شہید ایں 15 پولیس اہلکار زخمی تھیا ہیں پولیس ایں قانون لاگو کندڑ ادارن شرپسندن کی گرفتار کیا ہے

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन

0: ऐं जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हमले के जवाब में ईरान ते शदीद हमलो कयो। अमरीकी फौज वट ओचतो हमले जो जवाब देण लाइ रुगो कुछ मिंटन जो वक्त हो। ईरान जो अड़ो हशर कयो वेंदो जो याद रखंदो। वॾे खबर इदारे फॉक्स न्यूज सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जे हामी विराकनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाईनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। इराक में ईरानी प्रॉक्सीज दुनिया लाइ नासूर बणियल आहिनि। उन्हनि ख़िलाफ़ वधीक हमलनि ते बि ग़ौर कयो पियो वञे।

0: la puch horrable con que diga.
1: बच्चों बच्चों जाने तो त ही नसल दर नसल धांधली जी पैदावार आहे नवाज शरीफ पहिरियों पहिरियों वॾो वज़ीर धांधली सॾी पढ़ियो पहिरियों पहिरियों वज़ीर आज़म बि असगर ख़ान केस जे करे थियो टियों भेरो वज़ीर आज़म आरो इलेक्शन सबब बणियो अॼु बि कयल वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर अला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबब मिली आहे हुननि खे कश्मीर में धांधली करण न ॾींदासीं बिलावल भुट्टो सरदारी चयो मुज़फ़राबाद में नवाज़ लीग ते वार चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त ही मुज़फ़राबाद आहे श्रीनगर न अवां खे धांधली करण न ॾींदासीं ही चवनि था त कश्मीर खे पंजाब बणाए छॾींदासीं तानो ॾियनि था त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर खे कश्मीर ई ॾिसण चाहियां थो कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ई कंदा कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़राबाद मीरपुर रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे धांधलियन जे ॿाहिरि पीपल्स पार्टी धांधलियन जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टी ते टोक
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
5: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
4: आवाज की डोर से बंधा हुआ
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
7: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578
9: जी हाँ 3135525786
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।